0: पंडली कमर है, तिरछी नजर है, पंडली कमर है, तिरछी नजर है।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो DAB प्लस पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो

मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

ये हैं उजाला रेडियो सुन वालों और उजाला रेडियो के जरिए यहीं से हम शुरू करते हैं वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय एंड मेदक शो। कॉफी चाय मेदक शो हम शुरू करते हैं आज बुधवार बुधवार और भी 6 तारीख मई का प्रोग्राम आप सभी के वास्ते जोमतेन स्टूडियो आनंद चंद्रिका सिंह जिसके साथ हम बात करने वाले हैं आज के समाचार के बारे में या नतीलक ओवर अलालाय अंदर ऑनवर्प लुख्तग ऑनवर्प ऑफ उजाला रेडियो हाथ की रेखा कर्म से बदले।

और आज जितने लोगों के फरियाद हैं, जितने लोगों के फरियाद हैं, जेकर जन्मदिन है, सालगिरह, सभी को बधाइयां शुभकामना हम पेश करें। मगर फंदाख इन बिजोंदर उजाला रेडियो के जरिए हम आज इन बिजोंदर अपन भाई के माइला फेलिसिटेट करें। पूरे हैंगलो में बहुत दूर नीलांग के कोना में रहे, हैंगलो में रहे, और नाम है जॉय नंद कुमार। जॉय नंद कुमार इस वंदाग यारा van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Mooi zijn verjaardag in manier. Hamne tu kahan baate kaha hai, maar wel koffie chai hardam sunega. Koffie chai programma hardam sunega. Hij is vrachtwagenchauffeur. Aur hamar bhai Joy Nand Kumar u koffie chai u bahut jabardast sunega. Van harte gefeliciteerd Joy met je verjaardag. Mooi zijn verjaardag in manier. Joy Nand Kumar van harte.

0: गनवा मोइस सुन ले तो कि इस रंग बदलती दुनिया में निकला ना करो सज धज के नया सज धज के ये मुतलक वाल खुद आई थी नतुलक है ये मुत वाल खुद गक्लेड सैन
1: मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं मुझको तो किसी
0: इंसान की नियत कभी कभी ना मोई रहेगा।

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

क्या किया रे सनम आनंद राज आनंद एंड श्वेता पंडित इन दोनों से आप सुने न्यू नाडक कमरिया सॉन्ग था द कमरिया

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@

0: उजाला रेडियो पर संगीत के साथ आपके दिन और रात और भी खूबसूरत बन जाते हैं।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

उजाला रेडियो सुन वालों, और उजाला रेडियो के जरिए यहीं से हम शुरू करते हैं वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय एंड मेरा शो। कॉफी चाय मेरा शो हम शुरू करते हैं आज बुधवार, बुधवार और भी 6 तारीख मई का प्रोग्राम आप सभी के वास्ते। जोमतेन इन स्टूडियो आनंद चंद्रिका सिंह जिसके साथ हम बात करने वाले हैं आज के समाचार के बारे में, या नतीलक ओवर अलालाय अंदर ऑनवर्प लुख्तग ऑनवर्प ऑफ उजाला रेडियो। हाथ की रेखा कर्म से बदले।

और आज जितने लोगों के फरियाद हैं, जितने लोगों के फरियाद हैं, जेकर जन्मदिन है, सालगिरह, सभी को बधाइयां शुभकामनाएं हम पेश करें। मगर फंदाख इन इट बिजोंडर उजाला रेडियो के जरिए हम आज इन इट बिजोंडर अपन भाई के मांगीला फेलिसिटेर करें, पूरे हैंगलो में बहुत दूर नीलांग के कोना में रहे, हैंगलो में रहे, उनका नाम है जॉय नंद कुमार। जॉय नंद कुमार इस वंदाग यारग, van harte gefeliciteerd met de verjaardag. Mooi zijn verjaardag, meneer. Hamne tu kaha baate, kaha karees het, maar wel koffie chai, hardam sunega. Koffie chai, programma hardam sunega. Hij is vrachtwagenchauffeur. Aur hamar bhai Joy Nand Kumar, u koffie chai, u bahut jabarjast sunega. Van harte gefeliciteerd, Joy, met je verjaardag. Mooi zijn verjaardag, meneer Joy Nand Kumar. Van harte.

Dankjewel, Arnold, voor deze gezellige middag in Coffee Chai. En middagshow. Dankjewel. कॉफी चाय मेरा शो में इस रंग बदलती दुनिया में तू तनी संभाल के रहिए अल फ्राओ।

0: गरमा मोज से सुन लेते कि इस रंग बदलती दुनिया में निकला ना करो सच धज के नया सच धज के ये मुझे वाल खुद आइची नतुलक है ये मुझे वाल खुद खिलेट साइन
1: मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं मुझको तो किसी
0: इंसान की नियत कभी कभी ना मोई रहेगा।

8:12 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। नए महीना मई का पहला बुधवार है, आज 6 तारीख मई है मेरे प्यारे सुनने वालों, साल 2026। आप सभी को तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जहां भी आप सुन रहे हैं, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब बरसाए। अब से 9 बजे तक आपका सेवा हम करेंगे, लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, और वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से, जो हम फिर एक बार पेश करने वाले हैं। आज वादे के मुताबिक, क्योंकि पिछले हफ्ते हम नहीं थे, और वादे के मुताबिक आज इस 6 तारीख मई को राजेश खन्ना जी का आखिरी प्रोग्राम हम पेश करेंगे, और आज प्लेलिस्ट को फिर एक बार सजा रखा है इनके फिल्म से निकाले हुए इनके पॉपुलर सॉन्ग्स, और भी है, लेकिन फिलहाल आज मैं आखिरी बनाऊंगा। क्योंकि और भी महान महान कलाकार हैं जो ये प्रोग्राम में हिस्सा भी लेंगे, तो प्लानिंग के हिसाब से मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मेरे प्यारे सुनो, तहे दिल से फिर एक बार आपको स्वागत हम करते हैं। बेहद खुशी है हम कि आप सभी चून किए हुए हैं आज इस बुधवार की रात्रि को, और हमारे प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों, हमेशा की तरह आप सीधे स्टूडियो में, अगर आप ऐप करेंगे तो सीधे स्टूडियो में आपके ऐप आएंगे, अपने 9390 02 3 6 3 08 08। और है दफ्तर की कार्रवाई, मेरे प्यारे सुनने वालों, आपकी फरमाइशें, जरूरी खबरें और मौत की खबरें, जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे, सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप उजाला रेडियो के दफ्तर को तार के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 02-3409-07-02-4-09-07। या तो आप मेल करें, और मेल आप किसी भी पल, किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी जगह आप होंगे, आप मेल कर सकते हैं। जब भी आपको उजाला रेडियो को जरूरत पड़े आपके कामों काज के लिए, आप मेल करें info@ujala.nl पर। ले चलते आज के ओपनिंग सिलेक्शन की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों, और आज का ओपनिंग सिलेक्शन एक फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी और जीता हुआ गीत मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, जो किशोर कुमार गीत गाकर सुनाएंगे आरडी बर्मन की साज और संगीत पर। 1981 का फिल्म कुदरत से हम निकालेंगे, और गीत का बोल है ये कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम तो नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।

हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनो वालों, खूबसूरत गीत, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी और जीता हुआ नगमा मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ। इन्होंने गाकर सुनाए हैं आर डी बर्मन, राहुल डी बर्मन की साज और संगीत पर। आज का ओपनिंग सिलेक्शन फ्रॉम द मूवी कुदरत, मेरे प्यारे सुनने वालों, और कुदरत नी हती नी नन तख्त का है 1981। चेतन आनंद जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी जिसमें द ग्रेट राजकुमार ने भी काम किया है, लवर बॉय, राजेश खन्ना ऑफ कोर्स, और विनोद खन्ना, हिरनी जैसी आंखें वाली द ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, अरुणा रानी, देवन वर्मा। फिर एक बार तहदिल से हम स्वागत करते हैं आप सभी को, मेरे प्रिय सुनने वालों। उजाला रेडियो आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन पर आप चून किए हुए हैं, और बैक टू द फ्यूचर जो आज फिर एक बार हम पेश कर रहे हैं लाइफ एंड आर यू आर के स्टूडियो रतनाम से। और ये प्रोग्राम आज हम आखिरी जो सजा रहे हैं राजेश खन्ना जी का। सभी इन्हें जानते हैं, सभी ने इनके मूवीज भी देखे हुए हैं, और इनके मूवीज में खूबसूरत नगमाएं जो है उसको हमने कुछ हफ्तों के लिए निकाल निकाल कर खूबसूरत प्ले लिस्ट जो है सजा रखा था, आप तक हमने पेश किया है। और आज के लिए भी हमने एक आखिरी प्ले लिस्ट को सजा रखा है, उसी में से गीत निकाल रहा हूँ और आप तक मैं पेश कर रहा हूँ, तो आप एंजॉय करें भरपूर मेरे प्यारे सुनने वालों। और फिर एक बार स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार और अरापर्स है। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों हम निकालेंगे 1971, 10 साल वापस हम जाएंगे। नीहती नहीं नंसी तक एक आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत जो हम आप तक पेश करेंगे। और जिसका संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार को फिर एक बार हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम में ये नगमा लेकर।

0: वर्चुअल डीजे
1: यहाँ वहाँ सारे जहाँ पे तेरा राज है। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत। किशोर कुमार ने गीत को गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। आन मिलो सजना फिल्म का नाम, आन मिलो सजना 1971 का फिल्म है, नीहती नई नंसी, जिसका डायरेक्टर है मुकुल दत्त, मेरे प्यारे सुनने वालों, और लवर बॉय राजेश खन्ना का फिल्म, और जिसमें आशा परेख भी है, विनोद खन्ना, निरूपा रॉय, राजेंद्र नाथ, जूनियर महमूद, सुजीत कुमार, इंद्रानी मुखर्जी। हम आपको झुलाएंगे मेरे प्यारे सिनोलो, कभी ऊपर चढ़ेंगे तो कभी नीचे, और 71 के बाद हम 82 की ओर आपको ले चलेंगे। फिल्म का नाम है राजपूत, और राजपूत का एक नगमा, ये भी आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है, और जिसका संगीतकार भी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये फिल्म से गीत जो मैं निकाल रहा हूँ, गीत का बोल है मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, किशोर कुमार once again।

होकर घोड़े पर सवार मेरे प्यारे सुन वालों, खूबसूरत गीत गाकर हमें सुनाए हैं किशोर कुमार। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत मेरे प्यारे सुन वालों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार। राजपूत फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुन वालों, और राजपूत मूवी 1982 का है, निहतिन त्वेन तख्त विजय आनंद का डायरेक्ट किया हुआ, जिसमें राजेश खन्ना, द लेजेंड धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, टीना मुनीम, रंजीता रंजीत, नाजिर हुसैन, कमल कपूर, ओम शिवपुरी, तेज सापरू साहब जी, और क्या नाम है, नजीर हुसैन, हाँ जी, इन सभी ने ये मूवी में काम किया है। 6 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सारी 6 बजकर। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और स्वागत करता हूँ लाइव जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर उजाला रेडियो के स्टूडियो रतन राम से। और आज प्रोग्राम राजेश खन्ना का आखिरी हम आप तक पेश कर रहे हैं। हम आपको वापस ले चलेंगे 1971 के ओर, निहतिन नसीब। फिल्म का नाम है दुश्मन, और दुश्मन का एक नगमा ये भी आनंद बख्शी जी ने लिखा, संगीतकार द सेम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वंस अगेन किशोर कुमार, लेकिन अब की बार लता जी के साथ मिलकर गीत गाएंगे कि मैंने देखा और तूने देखा।

हमने देखा, तुमने देखा, सपने देखा, एक दोस्त तो दुश्मन से, एक दुश्मन, हाँ एक दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। लता जी और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत, और वो भी जिसका संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। खूबसूरत गीत निकाले हमने मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म दुश्मन और दुश्मन 1971 का है, निहति नैनन सेवंत, दुलाल गुहा जी का डायरेक्ट किया हुआ, लवर बॉय राजेश खन्ना, और मैं देखता हूँ कौन है, मीना कुमारी मुमताज, बिंदु रहमान साहब जी। उम्मीद और आशा करते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों की आप नगमाएं सुनते वक्त आप बेहद भी आनंद ले रहे होंगे। गीतों के साथ भी बहुत सारे लोगों की कुछ पुरानी यादें भी जोड़े हुए हैं, तो मैं तो कहता हूं अगर यादें खूबसूरत है तो उसे जरूर से जरूर फिर ताजा करो। खूबसूरत गीत की ओर वंस अगेन आपको ले चलते हैं, फिर एक बार लता जी और किशोर कुमार, लेकिन ये गीत के लिए छलान लगाना पड़ेगा, जाकर हम पहुंचेंगे 1983 निहत इंद्रियन तख्त। आनंद बख्शी जी ऑफ कोर्स इन्होंने लिखा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खूबसूरत गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाजें में आप सुनेंगे कि दिन महीने साल गुजरते जाएंगे।

खूबसूरत मूवी से बहुत ही खूबसूरत गीत निकाल कर आप तक हमने पेश किया है बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ कि दिन महीने साल गुजरते जाएंगे हम प्यार में जीते प्यार में मरते यूं जाएंगे। लता जी और किशोर कुमार की खूबसूरत आवाजें आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ और संगीत पर। वन ऑफ माय फेवरेट मूवी अवतार से हमने नगमा को निकाले फिल्म इंद्रियन तख्त 1983 मेरे प्यारे सिने वालों मोहन कुमार ने जो डायरेक्ट किया है प्रोड्यूस किया है राजेश खन्ना शबाना आजमी ए के हंगल सचिन पिलगांवकर यूनुस परवेज पिंचू कपूर प्रीति सापरो रजनी शर्मा सुचित कुमार गुलशन ग्रोवर शशि पुरी मधु मालिनी या मोह ये फिल्म अगर देखा नहीं इसे नाम राडर फिल्म अवतार। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों और एक पॉपुलर सॉन्ग जहां तक मेरा ख्याल है उसमें है राजेश खन्ना का एक मनीत है फरदीप माफी चाहता हूं लेकिन राजेश खन्ना का आखिरी पॉपुलर सॉन्ग और शायद मूवी भी फिल्म का नाम है वफा और ये 2008 का मूवी है एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग कुमार सानू की आवाज में आप सुनेंगे शब अली अलियाबादी जी का लिखा हुआ और सैयद अहमद और रवि पंवर का म्यूजिक। ये फिल्म जो है वफा 2008 का राकेश सावंत जी ने डायरेक्ट किया है और राजेश खन्ना सारा खान सुदेश बेरी तीनों आनंद ने ये मूवी में काम किया है। इस गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे सिनेमा मिलते हैं ब्रेक के उस पार विद लॉट्स ऑफ मोर राजेश खन्ना सॉन्ग्स आप सभी के लिए। तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभाले

मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। धड़भड़ गीत फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग किशोर कुमार ने गाकर सुनाए, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार आर जी बर्मन। महबूबा मूवी से हमने नगमा को निकाले, एक मूवी इतनी हिट इंसेशन से 1976 का मूवी, जिसका मेरे प्यारे सुनने वालों डायरेक्टर शक्ति सामंता साहब जी, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा का एक फिल्म। वेलकम बैक, ये है उजाला रेडियो, मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे और राजेश खन्ना का प्रोग्राम आज बैक टू द फ्यूचर में सजा रहा हूं। राजेश खन्ना जी का आखिरी प्रोग्राम है, अगले हफ्ते 13 तारीख को किसी और कलाकार का प्रोग्राम हम सजाएंगे। It is 12 minutes over the clock fun save, 7:12 गुजर चुके हैं, स्वागत है और 9 बजे तक आपका दिल हम बहलाएंगे लेकर राजेश खन्ना जी के खूबसूरत नगमाएं। और मैं देखता हूँ अब की बार एक दर्द भरा गीत और भी है प्रोग्राम में, बहुत खतरनाक सॉन्ग है ये भी, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है, किशोर कुमार की आवाज़ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार। नजराना मूवी से हम गीत निकाल रहे हैं, 1987 नेहतीन सेवन ताख्तक का फिल्म, कि इससे पहले कि तू याद आए मैं ये तेरा शहर छोड़ जाऊंगा।

कि याद तू आए मैं तेरा ये शहर छोड़ जाऊंगा। डट भरे गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, अपनी डट भरी आवाज में गीत गाकर सुनाए किशोर कुमार, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और संगीत पर। नजराना फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, नजराना तख्त 1987 का फिल्म, रवि टंडन जी ने डायरेक्ट किया है। लवड़ बॉय सुपरस्टार राजेश खन्ना, स्मिता पटेल और श्रीदेवी का एक फिल्म। वापस ले चलेंगे आप सभी को सेफन तख्त से एकदम नीचे 1972। तुम वासिक नोख ही लकले नहीं होंगे, मुझे मालूम है ये फिल्म मैंने द पारल में देखा। गीत जो आपको सुनाने जा रहा हूं, रोमांटिक सॉन्ग, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग, आनंद बख्शी जी वंस अगेन इनका लिखा हुआ, वंस अगेन किशोर कुमार, लेकिन अब की बार संगीतकार है आर जी बर्मन, राहुल बर्मन, 1972 का फिल्म। अमर प्रेम से निकाल रहा हूं ये नगमा।

ग्रेट किशोर कुमार, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग। किशोर कुमार ने गीत को गाए हैं आर डी बर्मन के साज और संगीत पर, किचिंगारी कोई भड़के। फिल्म का नाम अमर प्रेम, मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल मूवी अमर प्रेम 1972 का है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों ही शक्ति समंता साहब जी, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर जी ने मूवी में काम किया है। और इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ विनोद मेहरा, सुचित कुमार, ओम प्रकाश जी, बिंदु, फरीदा जलाल, हाजी आइलिन जी, आयत हार्लेम, दंकीवेल, आपके ऐप के लिए सुशीला चंद्रिका सिंह जी, आयत आमसलफेन, दंकीवेल, ओक फोर यापियर, मफराव एंड मनेर बिहारी, मफराव एंड मनेर बिहारी जी, आयत बरेडा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और ऐप करने के लिए बहुत दूर डबी कैपल न्यूयॉर्क सिटी से कविता जी, दंकीवेल, थैंक्स अ लॉट। भैया टोनी इजरी, आयताल मेर, द हार्ड वर्किंग मैन, दंकीवेल आपके ऐप के लिए। हिरेंद्र जी और चित्रा जी, अजमार से ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और दनाह का मिक जी, दंकीवेल, दंकीवेल आपके ऐप के लिए। आप सभी ने ऐप किए हैं, दिल से धन्यवाद। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर आप सभी ना होते, क्योंकि आप सभी को तो मालूम है, हमेशा मैं कहता हूँ आई लव यू ऑल, और सच्चे दिल से आप सभी से मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि आप ही इतनी प्यार दे रहे हैं। आपके प्यार के बिना मेरा ये प्रोग्राम और उजाला रेडियो कुछ नहीं। आपके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, बस आपका साथ, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, और कुछ नहीं। गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों। वंस अगेन किशोर कुमार, आर जी बर्मन वंस अगेन संगीतकार। अगर तुम ना होते का टाइटल सॉन्ग, और ये फिल्म 1983 का है। नीहत इंद्रियन तख्त इस तरह से प्रोग्राम में पेश करता हूं।

हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, गुलशन बावरा जी इनका लिखा हुआ गीत हमने आप तक पेश किया है। संगीतकार राहुल डबर्मन, मेरे प्यारे सुनने वालों, अगर तुम ना होते। निहत इंद्रियन तख तख का फिल्म है, 1983। लिक टेंडन जी ने डायरेक्ट किया है, राजेश खन्ना, राज बब्बर, रेखा मदनपुरी, वी एस नुखमेर, आसरानी साहेब जी, मदनपुरी, और गाना लिखने वाला गुलशन बावरा जी भी फिल्म में है।

प्रभा जी है ताम से नाम सेंद्रम नंकीलाल आपके ऐप के लिए और चून किए हुए है भी कुलेखा पारस मुली मामा जी भी सुन रहे हैं प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए आप सभी का साथ है तो ये बहुत प्यार जो आप दे रहे हैं मुझे क्योंकि आप कुछ और भी कर सकते हैं ना लेकिन फिर भी आप सभी ने चून किए हुए हैं और क्यों ना चून करें ये आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन है उजाला रेडियो 24 घंटे खूबसूरत प्रोग्राम जो बनाए हैं आप सभी के लिए बस आपका साथ चाहते हैं और कुछ नहीं शालिश नरेंद्र जी का लिखा हुआ गीत शाली शैलेंद्र महान सॉन्ग राइटर शैलेंद्र जी का सुपुत्र है जो बहुत सारे नगमाएं अपने पिता का पिता ने बहुत भरपूर जवानी में ऑटो चला गया ऊपर और शैली जी ने उनके जो अधूरे हुए नगमाएं थे इन्होंने पूरा किया है और बहुत सारे भी गाने ऐसे हैं कि इन्होंने भी खुद लिखा है तो इनका लिखा हुआ एक गीत किशोर कुमार की आवाज में आप तक हम पेश करेंगे ये है एक नगमा जो इनके पिता ने लिखा लेकिन फिल्म बहुत देर से रिलीज हुआ कारण की है कि कुछ लोग या डिसाइन ओवरलेड जैसे कि शैलेंद्र जी भी तो बहुत रुकावट आए और फिर भी डायरेक्टर ने सोचा कि ये फिल्म को हमें पूरा करना चाहिए तो पूरा किए हैं संगीतकार शंकर जयकिशन किशोर कुमार की आवाज में गीत खूबसूरत आप सुनेंगे और निकाल रहा हूं ये खूबसूरत गीत दिल दौलत दुनिया फिल्म जिसका नाम है दिल दौलत दुनिया और 1972 का जो है

0: साथी है,
1: साथ में प्यारा साथी है। किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये खूबसूरत गीत शाली शैलेंद्र जी ने लिखा है, संगीतकार शंकर जयकिशन। दिल दौलत दुनिया फिल्म 1972 का नीतिन ट्वेन सी तक पीएन अरोरा जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। राजेश खन्ना और साधना का एक फिल्म जिसमें द ग्रेट अशोक कुमार भी है, हेलन ओम प्रकाश जी, आगा साहब जी, बेला बोस और टुन टुन। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं सुतमेर शहर में। डंकीवाल स्वाग फोर ये एपी अमस्टरडम में आईवी जहांगीर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और आईवी बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐप के लिए। आरएनएम शहर से भी ऐप आए हैं शारदा, शारदा आपको भी डंकीवाल धन्यवाद हम कहते हैं। एंजॉय राजेश खन्ना का ये आखिरी प्रोग्राम जो हम सजा रहे हैं आज लाइफ एंड आर की वार के स्टूडियो रतनाम से। और भी दिलचस्प नगमाएं आएंगे, बसा भरपूर एंजॉय करें आप सभी। अगले गीत की ओर, ओ हाउ बॉय, क्या रोमांटिक सॉन्ग है ये, गुलजार साहब जी का लिखा हुआ गीत, लता जी किशोर कुमार के साथ, खयाम के साज और संगीत पर मिलकर गीत गाएंगे कि आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का नाम 1980 नेहतीन तख्त का।

आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, लता जी और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं। आर डी बर्मन की साज और संगीत पर गुलजार का लिखा हुआ गीत है और खयाम संगीतकार या सुमुतन से और फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई, इतनी हदीन तख्तक 1980। इश्माल शरोफ जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी है ये, और राजेश खन्ना शबनाज में पद्मिनी कोल्हापुर का एक फिल्म। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी जीत ने जीता नहीं लेकिन नॉमिनी तो था। खूबसूरत ये गीत हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिसका संगीतकार, किशोर कुमार की आवाज में गीत आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी दाग। और ये फिल्म दाग जो है नीख तिंद्रिया जीवन तक का है 1973।

मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। किशोर कुमार की आवाज, हमारे प्रिय सहील रुझानवी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और संगीत पर रोमांटिक सॉन्ग जो फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी भी इनको मिला, जीता नहीं अफसोस। फिल्म का नाम दाग मेरे प्यारे सिनेमालो अजनीत इंद्रियन सिंह 1973 और यश चोपड़ा जी इनका प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी जिसमें राजेश खन्ना ने काम किया है शर्मिला टैगोर जी के साथ, राखी, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी, मनमोहन और न जाने कितने और लोग ये फिल्म में भी काम किया है, जैसे कि एके हंगल में दिखता हूँ इफ्तखार, कादर खान, अशला सखदेव, हरी शिव डिजानी और कौन है, जगदीश राज भी है, पद्मा खन्ना। मूवी फिल्म मेरे प्यारे सुनो वालों और गाने सभी ये फिल्म का लाजवाब बेमिसाल है। फिल्म डाग अजनी खतीन द्रियन सीव 1973। मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि कल 7 तारीख मई को रात्रि में जो आखिरी 2 घंटे होंगे 10 बजे से 12 बजे आपका सेवा हम करने चले आएंगे। यही स्टूडियो रतनाम से पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज, मोरखनाफन दिल की आवाज, ये रानीवार लाइव फन आर्ट स्टूडियो रतनाम और वो भी 10 बजे से 12 बजे तक। इन 7 दख नतुलखा 7 दख बने करो 9 तारीख लेकर लोकल प्रोग्राम 5 घंटे आपका सेवा जो हम करेंगे। एनिक बैन हीलमाल बै खवेरक मेडलेटिस और कुछ दिलचस्प पुराने नगमाएं मेरे पास भी है जो हम लेकर आएंगे स्टूडियो में। न्यू एंड आवर हीर ऑन यू आर शनिवार को रात्रि में 7 बजे से 12 बजे एकदम लाइव प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, तो आप भरपूर मजा ले सकते हैं इन 2 प्रोग्राम के साथ, दिल की आवाज कल और शनिवार को सैटरडे नाइट फीवर। ले चलते आपको इस घंटे का आखिरी गीत की ओर फ्रॉम द मूवी अजनबी और हम दोनों 2 प्रेमी दुनिया छोड़ चले गीत का बोल है, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, आर डी बर्मन संगीतकार, किशोर कुमार और लता जी मिलकर गीत गाएंगे और ब्रेक के उस पार ये फिल्म का एक और गीत हम चलाएंगे, तो उसके बाद में फिल्म का इंफॉर्मेशन भी जरूर से जरूर हम आपको देंगे, तो आप भरपूर एंजॉय करें और मिलते हैं ब्रेक के उस पार मेरे प्यारे सुनने वालों।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत और जिसका संगीतकार थे आरजी बर्मन, राहुल बर्मन। 1974 का फिल्म नेह तीन फिर से वतक का फिल्म अजनबी से अभी नगमा आपने सुना है, और ब्रेक से उससे पहले हम दोनों दो प्रेमी भी ये मूवी का था। फिल्म का जो डायरेक्टर है शक्ति समंता साहब जी, राजेश खन्ना सीना तमान, जो कि तबाली का एक फिल्म। ये उजाला रेडियो है और 10 मिनट गुजर चुके हैं 8:03 ओवर द क्लॉक फन हो चला है। मैं हूं आपका यार रतन राम लाड़े पांडे, और बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनराम से। राजेश खन्ना जी आज बैक टू द फ्यूचर का प्रोग्राम में इनका आखिरी है, और इनकी टॉप सॉन्ग्स आप तक हम पेश कर रहे हैं। ये गीत मुझे खास बहुत खूबसूरत है, अनमिंदर बकेंद मा वेल फाक खदराइट इन माय प्रोग्राम, और यकीनन आप पसंद करेंगे, एक मस्ती भरी गीत है। और मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ नगमा है, नाइटिंगेल आशा जी और किशोर कुमार, राहुल बर्मन संगीतकार, फिल्म का नाम बुंडलबाज, और बुंडलबाज नेह तीन सेशन से का फिल्म है 1976। क्या हुआ यारो गरीब ही के हम पाले हैं। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनो, हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के वास्ते www.ujala.nl।

0: क्या हुआ यारो, गरीबी के हम पाले हैं, दिल का राजा है, दिल वाले हैं। नाइनटी कैलाशा जी और किशोर कुमार की आवाजें, ये मस्ती भरी गीत मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर गाए हैं। आर डी बर्मन, राहुल बर्मन की सहज और संगीत पर। फिल्म का नाम बुंडलबाज, और बुंडलबाज जो है मेरे प्यारे सिन वालों 1976 का फिल्म है। नी हतीन सेशन सी तक शम्मी कपूर, द ग्रेट एक्टर सुपरस्टार शम्मी कपूर जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी। इन्होंने भी ये मूवी में काम किया है लवर बॉय राजेश खन्ना जी के साथ, सुलक्षणा पंडित आसरानी, रंजीत सुलक्षणा मुकरी, फरीदा जल्लाल, जॉनी वॉकर, ललिता पावर। एक पॉपुलर सॉन्ग जो राजेश खन्ना पर पिक्चराइज किया गया है, डर बड़ा पेश करने जा रहा हूं। गीत आनंद बख्शी जी ने लिखा, एस डी बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन संगीतकार, किशोर कुमार की आवाज। प्रेमनगर फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनालो, प्रेमनगर 1974 का फिल्म है। नी हतीन फिरन सी तक ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा।
1: लाल रंग

ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत ही पॉपुलर डट भरे गीत आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, किशोर कुमार ने गाए हैं। एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के साझ और संगीत पर फिल्म का नाम प्रेम नगर, इतनी खतीन फिरन सीव तक 1974। मेरे प्यारे सुनने वालों, प्रकाश राव जी का डायरेक्ट क्या हुआ ये फिल्म है, जिसमें द लवर बॉय राजेश खन्ना ने काम किया है, हिरनी जैसी आंखें वाली द ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ, प्रेम चोपड़ा, कमिनी कौशल, नजीर हुसैन, द ग्रेट अशोक कुमार, अरुणा ईरानी, जगदीप। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और 6 मिनट बाकी है 8:30 में, जबकि हम आपको ले चलेंगे एक टाइटल सॉन्ग की ओर। फिल्म का नाम है आशिक हूं बहारों का और मूवी 1977 का है। नीहतिन सीफ नसीफ तक आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये टाइटल सॉन्ग है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गाने वाले हैं। किशोर कुमार के पहले नहीं देखा, कभी पहले नहीं देखा, ये फूल है किन गुलजारों का, मैं आशिक हूं बहारों का।

नहीं देखा कभी पहले, और ये फूल है कौन गिन गुलजारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। 1977 का मूवी फिल्म आशिक हूँ बहारों का। सो फिल्म हमने ये गीत को निकाले हैं ओम प्रकाश जी का डायरेक्ट किया हुआ, राजेश खन्ना सीना तमान डैनी डेंसोंगपा आजरानी का फिल्म। अब की बार गीत निकालेंगे 1974 का फिल्म जिसका नाम है हमशकल। ये गीत है आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, राहुल डबरमन संगीतकार, दलेजन पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और लता जी की आवाजें कि काहे को बुलाया मुझे भालमा प्यार का नाम से।

को बुलाया मुझे बालमा प्यार का नाम से। लता जी और रवि साहब जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। आर जी बर्मन की साज और संगीत पर फिल्म इतनी हिट फिर तक मेरे प्यारे से 1974 फिल्म का नाम हमशकल और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है जम्बू साहब जी, सुपरस्टार लवर बॉय राजेश खन्ना, मौसमी चटर्जी, तनुजा, इन सभी का फिल्म है। लिस का शारदा, सेंटमार्ट का पूनम और सूरीनाम का अनीता, डंक्यूलवेल चुन करने के लिए आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय दिल की, सॉरी बैक टू द फ्यूचर, दिल की आवाज तो कल होंगे मेरे प्यारे सुनो। कल रात्रि को दिल की आवाज रात्रि में 10 से 12 बजे हम पेश करने वाले हैं। एन सात रख नेख प्रोग्राम सैटरडे नाइट ईवर 5 घंटे का प्रोग्राम विद लोकल सॉन्ग्स रात्रि में 7 बजे से 12 बजे दोनों प्रोग्राम, जैसे कि आज का ये प्रोग्राम भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से सजाया जाएगा। एक गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनो वालों, एक गीत जो लता जी और किशोर कुमार मिलकर गाएंगे, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन संगीतकार, फिल्म का नाम आपकी कसम, एंड इट इज उकवानी हतीन फिरंसी, 1974 का मूवी है। पेश करता हूँ ये नगमा

सुनो कहो कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, लता जी और किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, आर डी बर्मन संगीतकार, फिल्म का नाम प्रेम, सॉरी आपकी कसम, रजनीकांत फिरन सेव, ओम प्रकाश जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, राजेश खन्ना मुमताज संजीव कुमार का फिल्म। बहुत गाने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, एक सितने तक आए कर हम प्लेलिस्ट को देख रहे हैं। मैं सोचता हूँ क्या एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, शायद तीन प्रोग्राम और भी बना सकते थे, क्योंकि इतने सारे नगमाएं खूबसूरत इन पर पिक्चराइज किया गया है। अब प्लानिंग मुताबिक आज आखिरी बना रहा हूँ द हाउड आराम, और जो बाकी नगमाएं पेश नहीं हुआ है दीद राय वाला नंदर किया है ना। अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनोल आपको ले चलते हैं, और फिल्म का नाम है रेत्रोस। रेत्रोस फिल्म 1980 का है, निकतीन तख्त। एक गीत जो आशा जी, नाइटिंगेल आशा जी और किशोर कुमार मिलकर गाएंगे, निदा फासली जी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन जो संगीतकार है। पेश करता हूँ खूबसूरत गीत

उसकी सदाएं मुझको बुलाएं। 90 के लाशा जी और किशोर कुमार की आवाजें, निदा फासली जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। आर डी बर्मन के साज और संगीत पर रेत्रो उस फिल्म का नाम। फिल्म 1980 का है, नीहतीन तख्त। और मैं देखता हूँ भारतीय राजा का डायरेक्ट क्या हुआ, राजेश खन्ना द लवर बॉय सुपरस्टार, इनका मूवी पूनम ढिल्लों के साथ, ओम शिवपुरी, अरुण रानी सत्यम या सत्यन कप्पू, रुपेश कुमार, इन सभी ने मूवी में काम किया है। एक गीत मैं पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार ने गाए हैं और किशोर कुमार भी संगीतकार है। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ एक नगमा, नट्यूलक लीव द हैनी मीर, लेकिन गीत बहुत सालों पहले लिखा गया था, किशोर कुमार ने इसे अपनी फिल्म जिसका नाम है ममता की छांव में, 1990 का फिल्म जो है, फिल्म को इसमें पिक्चराइज किया गया है और ये गीत राजेश खन्ना पर पिक्चराइज किया गया है ममता की छांव में, कि मेरे गीत अधूरा है कोई बिखरे तार सजा दे। पेश करता हूँ नगमा।

मेरा गीत अधूरा है मेरे प्यारे सुनने वालों। कोई बिखरे तारे सजारे, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत और किशोर कुमार संगीतकार। ना किशोर कुमार था ना शैलेंद्र जी, लेकिन फिल्म जो है रिलीज हुआ है इन सभी के मरने के बाद, ममता की छाँव में फिल्म 1990 का। और ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनो, प्रोड्यूसर किशोर कुमार और डायरेक्टर था किशोर कुमार भी, लेकिन अमित कुमार जी उनके सुपुत्र ने फिल्म को पूरा किया है। इन्होंने भी ये मूवी में काम किया है राजेश खन्ना जी के साथ, रीना चंद्रवरकर और डकड़ेत अशोक कुमार। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत हम पेश करने जा रहे हैं। इस आखिरी गीत के बाद आप सभी से माग्या लेंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि राजेश खन्ना का ये प्रोग्राम भी आप सभी ने भरपूर पसंद की है। मूर्खनाफन मैंने करवेर सीफ मैं लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज रात्रि में 10 से 12 बजे। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर मेरा साथ देंगे। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हो।

0: के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो
1: उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है।

ये हैं उजाला रेडियो सुन वालों और उजाला रेडियो के जरिए यहीं से हम शुरू करते हैं वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय एंड मेरा शो। कॉफी चाय मेरा शो हम शुरू करते हैं आज बुधवार बुधवार और भी 6 तारीख मई का प्रोग्राम आप सभी के वास्ते। जोमतेन इन स्टूडियो आनंद चंद्रिका सिंह जिसके साथ हम बात करने वाले हैं आज के समाचार के बारे में या नतीलक ओवर अलालाय अंदर ऑनवर्प लुख्तख ऑनवर्प और उजाला रेडियो हाथ की रेखा कर्म से बदले।

और आज जितने लोगों के फरियाद हैं, जितने लोगों के फरियाद हैं, जिक्र जन्मदिन है, सालगिरह, सभी को बधाइयां शुभकामना हम पेश करें। मगर फंदाक इन बिजोंदर उजाला रेडियो के जरिए हम आज इन बिजोंदर अपन भाई के मांगीला फेलिसिटेट करें, पूरे हैंगलो में बहुत दूर नीलांग के कोना में रहे, हैंगलो में रहे, उनका नाम है जॉय नंद कुमार। जॉय नंद कुमार इस वंदाग यार van harte gefeliciteerd met de verjaardag. Mooie verjaardag manier. हमने तो कहाँ बाटे कहाँ करे शायद माँ वेल कॉफ़ी चाय हरदम सुनेगा, कॉफ़ी चाय प्रोग्राम हरदम सुनेगा एस फ्रेटवाहन चौफेर, और हमारा भाई जॉय नंद कुमार वो कॉफ़ी चाय बहुत ज़बरदस्त सुनेगा। फन हार्ट गेफेलिसिटेट जॉय मे चि फयाडा मोई से फरियारी मने ये जॉय नंद कुमार फन हार्ट।

0: गरमा मोज सुन ले तो कि इस रंग बदलती दुनिया में निकला ना करो सज धज के नया सज धज के ये मुतलक वाल खुद आई छी ने तो लगे मुत वाल खुद खक्लेट से मैं
1: कैसे खुदा हाफिज कह दूं मुझको तो किसी
0: इंसान की नियत कभी कभी ना मोई रहेगा।